0: Standing ovation. Pure ke pure studio se.
1: Pure studio se standing ovation ek alag.
0: Ji.
1: लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टैंडिंग ओवेशन जो मैं मेरा दिल विश कर रहा था
2: मेनली थॉट न्यू हाउ बेस्ट स्पाइसेस एंड हार्ड वर्क इन द करी बेस्ट क्वालिटी एंड डिस्टिंक्टिव टेस्ट इन द करी द बेस्ट करी मनी कैन बाय मेड इन गयाना एंड स्टिल रेनिंग सुप्रीम चैंपियन बेकिंग पाउडर एंड इन द स्पेशल मद्रास करी पाउडर कुक एंड टेस्ट द डिफरेंस हियर्स टू द मेडन ऑफ बैश 415 हियर्स टू द विडो ऑफ 50 Here's to the flaunting extravagant queen. Here's to the housewife who's 50. Cook with Indi Special Madras Curry and Champion All-Purpose Baking Powder and the save. Make sure you buy the curry with the elephant on the package.

प्यार का गीत है इसको हर युद्ध गाना पड़ेगा लाइफ इज अ सॉन्ग ऑफ लव एवरीवन हैज टू सिंग जिंदगी गम का सागर भी है हंस से उस पार गाना पड़ेगा लाइफ इज ऑल्सो एन ओशन ऑफ सैडनेस वी ऑल हैव Good afternoon to Saki Duno. Swagatam to my bhaiya.